क्यों घास वन में आगो लगो भनी जीव जंतु को नाश वन में आगो लगो भनी वन जंगल खाँच वन में हुनी जीव जंतु ने सारे पीर मं फागुन देखि जेठसम आगो लगने डर आपनो

0: तू अभी तक रेडी नहीं हुई?
1: क्या फायदा, वो तो आ ही नहीं रहा है।
0: तू अपने बेस्ट फ्रेंड के शादी में ऐसे जाएगी? खुश हो जा, वो आ रहा है और तेरे लिए एक सरप्राइज है। तू झूठ बोल रही है।
1: सच्ची।
0: अब मैं दिखाती हूँ उसे सरप्राइज क्या होता है, देखती जा।

0: Willingo Festivity Offer. अब पाउन होस एक वर्ष को 200 Mbps इंटरनेट और नेट टीवी साथ में डुअल बैंड राउटर नोकिया बीकन 1.1 मेश राउटर और नेट टीवी सेट अप बॉक्स मात्र रु 1200 प्रति महीना में शर्त लागू होने छिटो बने गई Willing.
1: दमोलिया FM 94.2 समुदाय को आवाज.